0: कुछ उनकी सुनें, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और सोफिया जमशेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
1: अरे वसीमा साहिबा, ये वाटर गन क्यों ले आई हैं स्टूडियो में?
0: वाटर गन नहीं, गन्स हैं। मैंने तो वाटर बॉल भी लाना था ताकि इसको फोड़ के जो पानी निकले उससे आपको भगाऊं और गर्मी भगाऊं। इसे आप वसीमा सुनाएंगी पानी कहानी।
1: जी, आज पानी की कहानी भी सुनेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। पहले होगी एक बड़ी नई नवेली और ताज़ा तरीन रिपोर्ट।
0: रुके रुके, मैं समझ गई, ये रिपोर्ट होगी पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल 2026 पर। जी सामिन, आजकल टोक्यो में मुनाक़िदा इस चार रोज़ा मेले के पहले दिन पर रिपोर्ट सुनते हैं खलील शिराजी की ज़ुबानी।
2: जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं टोक्यो के उएनो पार्क में। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ख़वातीन हज़रात यहां पे जमा हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे सजा है पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल का मेला।
3: यहां पाकिस्तानी खानों के स्टॉल सजे हुए हैं और पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया हैं।
2: तो दोस्तों, अभी मेरे पीछे जो मुजाहरा किया जा रहा है, ये तलवार रक्स है। तलवार रक्स का मुजाहरा किया जा रहा है।
3: रक्स करने वालों ने समुराई लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा है और जापानी तलवारों के साथ अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, और लड़ाई के मनाजिर को भी रक्स के अंदाज में पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस रक्स और पाकिस्तानी तलवार रक्स में सबसे नुमाया फर्क लिबास का ही है।
2: जी दोस्तों, ये था तलवार डांस। तो यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो देख रहे थे बड़े निमाक के साथ। तो उनसे पूछते हैं वो पाकिस्तान में कहाँ से हैं और उन्होंने इस रक्स को कैसा पाया।
4: मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ और मुझे जापान में 3 साल हो गए, तकरीबन 3रा साल है तकरीबन देख रहा हूँ। और बड़ा मज़े का जो है ना, मतलब ये इवेंट होता है। और अभी जो रक्स का मैंने देखा है ना, बहुत मज़े का था, बहुत कमाल का था। ये इनका ट्रेडिशनल है, जापानी कल्चर है, तो बहुत मज़े का था।
2: तो क्या महसूस हुआ इसको देखकर, अब क्या याद आया?
4: पुराने दौर में जो हम वैसे मूवीज में देखते हैं, वो सारा जो पुराना दौर है वो याद आ गया है।
3: तकरीब के दौरान मेरी मुलाकात इस इवेंट के मुंतजिम से भी हुई। मैंने उनसे इस तकरीब के इनेकाद के अगराज व मकासद के बारे में पूछा।
5: जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरिश्का शाकिर खान गौरी है, नाम थोड़ा लंबा है। असल में ये प्रोग्राम हमने 2008 से शुरू हुआ था, बेसी में शुरू हुआ था। उसके बाद हम ये इस प्रोग्राम को, ये 9वीं दफ़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसका बेसिक मकसद हमारा ये था कि मैंने जैपनीज है बच्चे मेरे ना, तो इन बच्चों को किसी तरीके से हम जो है अपने साथ कल्चरी जो है इनको अपने आप साथ मिलाएं। फिर ये है कि हमने इसको जश्न आज़ादी भी साथ मना लेते हैं, तो कोशिश ये होती है कि जैपनीज़ों के साथ मिल के ये जो है ना प्रोग्राम किए जाए। एक दूसरे का तावन जैसे होता है, इनका हमारा खाना है, इनके खाने हैं। जैसे आज आपने देखा है कि गेम शो से भी आए, उन्होंने यहाँ पर देखा, तो ये अप्रिशिएट होगा। तो ये पाकिस्तान का इमेज के लिए भी अच्छा है और हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में यहाँ पर मिलें, बस यही हमारा मकसद है।
3: शाकिर साहब ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि अब कुछ जापानी नौजवान रवानी के साथ उर्दू बोलते हैं, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। लेकिन फिर उसी वक्त मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जो ऐसे उर्दू बोल रहे थे।
6: मेरा नाम केंता है और मैं जापान से हूँ।
2: कैसा लगा, कब आपको पता चला कि ये इवेंट है? आप हर साल आते हैं या पहली दफ़ा आए?
6: मैं तो ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ आता रहता हूँ।
2: जी, क्या चीज़ आपको खींच जाती है यहाँ, क्या चीज़ यूनिक है, किस लिए आते हैं?
6: जैसे तो अभी कव्वाली का नज़ारा चल रहा हो रहा है, तो ये भी बहुत एक मुनफरिद चीज़ है ना। हाँ,
2: तो इतनी अच्छी उर्दू आप कैसे बोल लेते हैं?
6: कि अपने असातिज़ा के साथ
2: उर्दू पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं?
6: टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, टोक्यो गाइगोदाई में। 5-6 सालों के लगभग से उर्दू की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं 1-2 दफ़ा पाकिस्तान भी जा चुका हूँ, तो पाकिस्तान में से भी मैंने उर्दू सीखी है।
2: तो यहाँ कोई मुकाबला हो रहा है, देखते हैं किस चीज़ का। हाँ, आम खाने का मुकाबला है, तो आइए देखते हैं कि आम खाने का मुकाबला कौन जीता या कौन जीतती है। 1-2-3-4-5-6-7

0: आठ नौ दस ग्यारह के लगभग पार्टिसिपेंट्स हैं और मेरे ख्याल में सारे के सारे जैपनीज हैं। तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है और या कौन जीतती है। तो अभी शुरू होने वाला है।
1: अच्छा, ये मैंगो मैंगो ईटिंग कॉन्टेस्ट है। इसका रूल ये है कि इसको सही तरह जापान में तो बड़ा थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, पाकिस्तान में तो एक एक मैंगो खाते हैं। तो इसको खाने का तरीका ये है कि सही तरह इसको, इसका मतलब अंदर से सही तरह साफ तरीके से, और सबसे जो जल्दी खाएगा वो जीतेगा।
0: अच्छा, यानी अंदर से साफ करना है और मुकम्मल तौर पे जूस निकाल के पूरा सफाई के साथ खाना है, तो जो पार्टिसिपेंट पहले फिनिश करेगा वो जीतेगा। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन जापानी लोग अमूमन इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मज़ा आएगा देखने में, देखिएगा।
2: इस मुकाबले के फातह एक नौजवान जापानी ने हमसे बात करते हुए बताया,
3: मैंने इससे पहले कभी पाकिस्तानी आमों का जायका नहीं चखा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने मीठे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस डब्बे में मुझे पूरे 6 आम इनाम में मिले हैं। इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।
0: दोस्तों, आज पहला दिन था, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मेरा इरादा है कि मैं दूसरे दिन भी आऊँ और आपके लिए एक डिटेल रिपोर्ट भी बनाऊँ। तो अगले हफ्ते के प्रोग्राम में डिटेल रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
4: भाई, मुझे तो आम खाने का मुकाबला बड़ा मजाहिया लगा, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहूंगी और आमों का एक डब्बा भी जीतना चाहूंगी। जापान में वैसे आम बड़े महंगे हैं।
2: जी हाँ, अगले साल हम सब स्टेज में जाकर इस मुकाबले में शरीक होंगे।
4: अच्छा, वैसे मैं खलील साहब तकरीब की बाकी रिपोर्ट सुनने की बड़ी मुंतजर हूँ।
2: जी, वसीमा साहिबा भी इन रिपोर्ट्स में मेरे साथ शामिल होंगी।
5: जी सामिन, क्या ये सुन के आपका इश्तियाक बढ़ा है कि आइंदा हफ्ते भी आपसे मज़ीद तफसील हम आपको बताएंगे, और हाँ, इसके वीडियो क्लिप्स भी बनेंगे, वो भी हमारी वेबसाइट पर ज़रूर देखिएगा।
4: जी बिल्कुल, और हम और हमारे साथ साथ सब सामिन भी मुंतज़िर रहेंगे।
2: चलिए वसीमा साहिबा, अब आप सुनाइए वो पानी कहानी।
5: अभी तो आम का सुन के मेरे मुंह में आ रहा है पानी।
4: रुकिए ज़रा, मैं बताती हूँ। सामीन, पाको हिंद के बेशतर इलाकों में गर्मियों का मौसम चूंकि नस्बतन तवील और शदीद होता है, लिहाजा वहाँ गर्मी भगाने का बड़ा मारूफ तरीका यह है कि सहनों और दलानों के साथ साथ गली कूचों में पानी का छिड़काव करें,
5: या फिर वाटर गन्स या वाटर बॉल से खेलें। एक छोटी सी बात बताती चलूं कि यहाँ जापान में भी जब बहुत गर्मी होती है तो बिल्डिंग्स के आसपास और छिड़काव सड़कों पे छिड़काव काफ़ी होता है।
2: मुझे यहाँ आकर पता चला कि जापान में भी लोग वाटर गेम्स और बीच गेम्स वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
4: जी जी, जापान में चारों तरफ समुंदर है, यूं कहिए पानी ही पानी, बल्कि बोल मेरी मछली कितना पानी।
5: अच्छा सामिन, वाटर गेम्स में तो वाटर गम, वाटर गन और वाटर बॉल और ऐसे पानी छिड़कना वगैरह शामिल हैं। बीच गेम्स के हवाले से, यानी साहिल पे खेले जाने वाली गेम्स के हवाले से, उर्दू सर्विस के जापानी अमले की हमारी नई रुकन कानेको बिस्मा साहिबा ने बताया कि जब वो बीच गेम्स के बारे में सोचती हैं तो उनके तस्वुर में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो सोइका वारी, यानी तरबूज को तोड़ना।
4: सुइका जापानी जबान में तरबूज को कहते हैं, और सुइका वारी का मतलब तरबूज को तोड़ना। ये जापान में गर्मियों का रिवायती खेल है जो अमूमन समुंदर किनारे खेला जाता है, जिसे ग्रुप की सूरत में खेला जाता है।
5: जी जी, इसमें एक खिलाड़ी आंखों पर पट्टी बांधकर जमीन पर पड़े तरबूज को छड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि ग्रुप के दूसरे लोग उसके लिए हदायत दे रहे होते हैं, जरा दाएं हो जाओ, जरा थोड़ा आगे आगे, जरा सा पीछे हटो।
2: अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन खेल का इंसार इस बात पर होता होगा कि दोस्त या साथी खिलाड़ी को कितनी अच्छी हदायत दे रहे हैं। जितना अच्छे वो बताते होंगे तो दुरुस्तगी से गाइड करते होंगे तो जीतने के इम्कान मेरे ख्याल में उतने ही रोशन होते होंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, अगर खिलाड़ी छड़ी को इस कदर दुरुस्त पोजीशन में ले जाए कि तरबूज तोड़ा जा सके, तो फिर जो जीता वही सिकंदर।
2: यानी तरबूज को छड़ी से फोड़ डाला।
5: फोड़ नहीं डाला, फोड़ ही डाला, और फोड़ने के बाद मिल बांट कर खाया भी।
4: खाने को बिस्मा एक और बड़ी तख्लीकी खेल का जिक्र कर रही थी।
5: हाँ जी हाँ जी, रेत का खेल। बिस्मा कहती हैं कि बहुत से लोग साहिल पर रेत के किले और रेत से कई चीजें, जैसे कोई ना कोई जानवर या सुरंगे वगैरह बनाते हैं।
2: रेत का किला बनाने के खेल के बारे में तो मैंने भी सुन रखा है,
5: जो बाल्टी में रेत भर के बनाते हैं।
4: हम भी बहुत बनाया करते थे बचपन में। बिस्मा के मुताबिक उन्होंने देखा कि कई खानदान और दोस्त अक्सर ऐसे तख्लीकी डिजाइन बनाने और साहिल समुंदर पर लुत्फ अंदोज

0: कोने में वक्त गुजारते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों को रेत में दफन कर देते हैं, सिर्फ उनके सर रेत से बाहर रह जाते हैं, और ये एक तफरीही साहिली सरगर्मी के तौर पर होता है।
1: ऐसी सरगर्मी के लिए तो काफ़ी हिम्मत दरकार होती होगी। रेत में फंस जाएं, धंस जाएं तो फिर क्या होगा?
2: असल में मसला ये है कि दोस्त ही हों दबाने वाले। क्योंकि रेत है, जरा सा जिस्म झटकें, जरा सा जोर लगाएं तो रेत की दीवार मिनटों में गिरा सकते हैं।
0: अच्छा वसीमा, एक और खेल है बीच फ्लैग, जिसमें साहिल पर छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे गाड़े जाते हैं, और इसमें खिलाड़ी साहिल पर गाड़ा हुआ झंडा हासिल करने के लिए एक साथ रेत पर दौड़ते हैं, और तेज तरीन खिलाड़ी जीत जाता है। बिस्मा बताती हैं कि इस बारे में मेरी एक याद है, मैंने ये बचपन में नंगे पांव खेला था और रेत इतनी गर्म थी कि ऐसा लगता था कि मेरा पांव झुलस गया हो।
2: कहती हैं उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने खेल में कभी भी दोबारा शरीक नहीं होना।
1: बिस्मा ने एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। कहती हैं कि अपने बचपन में उन्होंने अपने भाई के साथ एक मुनफरिद साहिली मुकाबले में हिस्सा लिया था। मुकाबला ये देखने के लिए था कि किस की जिल्द सूरज में सबसे ज्यादा सांवली हो जाती है,
2: काले हो जाते हैं
1: तकरीबन, यानी कि मिलते जुलते। तो तकरीबन 15 शुरका इसमें मौजूद थे और बिस्मा के छोटे भाई ने पहली पोजीशन हासिल कर ली थी।
0: वैसे यूरोपीय मुल्कों में तो लोग जिल्द को सांवला करने के लिए कई कई घंटे घुसले आफ्ताबी करते हैं।
1: घुसले, क्या शायराना तशबीह दे डाली। चलिए आपको एक गीत ही सुन लेते हैं।
0: जी जी, आज सुनवाए जाने वाले गीत का उन्वान है उमी नो यूरे, यानी समुंदर की रूह है।
2: इसके पेशकार हैं केंची जुनेजू। मार्च 1991 को जापान के तोकुशिमा प्रीफेक्चर में पैदा हुए वो, उन्होंने 2009 से हाची के नाम से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म निको निको दोगा पर असल गाने पोस्ट करना शुरू किए थे।
0: 2012 में अपने असल नाम केंची जुनेजू के तहत उन्होंने अपना पहला एल्बम दियोरामा जारी किया, जिसमें उनकी अपनी आवाज़ शामिल थी।
1: यूनेजू ने टेलीविजन कमर्शियल्स, टेलीविजन ड्रामों और फिल्मों के लिए मुतअद्दिद थीम सॉन्ग लिखे और पेश किए हैं। 2022 में उन्होंने प्लेस्टेशन के कमर्शियल के तौर पर पॉप सॉन्ग कमर्शियल गाना लिखा और खुद भी इस कमर्शियल में नजर आए,
2: गुलकार भी और अदाकार भी। उसी साल उन्होंने टीवी एनिमे सीरीज चेनसा मैन के ओपनिंग थीम के तौर पर किक बैक लिखा।
0: आज जो गीत सुनाया जा रहा है उमी नो यूरे, यानी समुंदर की रूहें, या स्प्रिट ऑफ द सी, ये एनिमेटेड फिल्म यानी काइजू नो कोदोमो चिल्ड्रन ऑफ द सी के थीम सॉन्ग के तौर पर रिलीज किया गया।
1: फिल्म चिल्ड्रन ऑफ द सी एक 14 साल लड़के की कहानी है जो मौसम गर्मा में उसकी दो भाइयों के साथ मुलाकात की दास्तान है, जिन्होंने दोगोंग यानी एक किस्म की समंदरी मखलूक के ज़ेर साया परवरिश पाई। ये फिल्म फितरत के लिए गहरी अकीदत की अक्कासी करती है।
2: केंची जुनेजू ने ऐसी मौसीकी लिखने की कोशिश की जो दरअसल उस फिल्म के मौजू से मुताबिकत रखती हो।
0: इस गीत को मुंतखब करने वाली बिस्मा कहती हैं कि उन्होंने ये गाना इसलिए मुंतखब किया क्योंकि ये फिल्म गर्मियों के समुंदर से गहरा ताल्लुक रखती है और इसके बोल गर्मियों के मनाजिर से भरे हुए हैं, जैसे समुंदर की रूहें और हवा से झुका हुआ रेतीला साहिल। मजीद बरा केंची जुनेजू जापान के सबसे मशहूर फनकारों में से एक हैं।
2: अच्छा, इसके गीत के बोलों का जहाँ जिक्र हुआ तो बिस्मा ने बोलों में समंदर से मुतालिक तमाम अल्फाज को अंडरलाइन कर दिया, तो बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ यही लाइन दोहराऊंगी। इस कमरे में कोई भी दरवाजे खुले नहीं, एक कुर्सी है जो समंदरी हवा की खुशबू में डूबी हुई है, मैं इसे खुला छोड़ दूंगा ताकि तुम गुम ना हो जाओ। तो आइए गीत सुनते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रिला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: उगते सूर्य के देश से सभी श्रोताओं को रंजना सिंह का भी नमस्कार।
2: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: कामायनी जी, रंजना जी, आपको और हमारे सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत बधाई।
1: सभी को अनेक शुभेच्छा। और आप बताइए, आपने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया?
0: देखिए, भारत से दूर इतना जोर शोर से तो नहीं मना सकते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय दूतावास में झंडा रोहण समारोह में जरूर शिरकत कर सकते हैं। और जब तिरंगे को लहराता देखती हूँ ना, तो मन में खुशी और गर्व महसूस होता है।
2: जी सही कहा आपने, लेकिन एक ही दिन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने की बजाय मेरा मानना है कि हम अपने दैनिक कृत्यों से देश प्रेम दिखा सकते हैं।
0: विचार तो बहुत बढ़िया है, तो चलिए अपने श्रोता मित्रों से ही पूछा जाए कि उनके विचार में देश प्रेम के लिए क्या करना चाहिए।
2: अगले पत्र में जरूर बताएं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। झारखंड जमशेदपुर से SP शर्मा जी के इस पत्र से। शर्मा जी ने योग दिवस पर चरी के देश से कार्यक्रम की प्रस्तुति को बेहद पसंद किया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, लिखते हैं, योग दिवस पर प्रसारित चरी के देश से कार्यक्रम सुना था। इस प्रोग्राम में योग के महत्व के साथ जापानी प्रैक्टिशनर द्वारा भारत में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने और इतिहास रचने की प्रेरक कहानी सुनी। बढ़िया लगा। योग तो जीवन में नया जोश और उत्साह भर देता है और जीवन को ही नया बना देता है। इस तरह की प्रेरक कहानियों को आगे भी सुनाते रहिए। शुक्रिया और शुभकामनाएं।
1: शर्मा जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार, धन्यवाद। वाकई योग जीवन में नई ऊर्जा भर देता है।
0: जी हाँ, और इस साल की थीम तो हम सभी के लिए जरूरी है, स्वस्थ आयु के लिए योग। वैसे शर्मा साहब, मीनाक्षी मियोको जी के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो अब वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको भी जरूर देखें। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से योग को अपनाया है, वो वाकई प्रेरणादायक है।
2: मित्रों, आप सब भी जरूर देखें। इसकी लिंक NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के फेसबुक पेज पर पिन की गई है। इस पेज पर जाते ही सबसे ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगी।
0: अच्छा, आप तो देखें ही, अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी इस लिंक को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग इससे प्रेरणा लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाएं। रंजना जी, देख रही हो, आपने अगला पत्र उठा भी लिया है, किसका खत है?
1: जी, ये पत्र है ओडिशा के सिंगा से हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल जी का।
0: अच्छा।
1: लिखते हैं, 9 अगस्त को साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के अंतर्गत मेरे पत्र के उत्तर को सुनकर मन कुछ देर के लिए भीतर तक उदास हो गया। मन को थोड़ी निराशा अवश्य हुई, क्योंकि वर्षों से जुड़े इस आत्मीय रिश्ते में कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा भी मन में पलती रही थी। फिर भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी भावनाओं को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया और मेरे मन की बात को श्रोताओं तक पहुँचने का अवसर दिया।
0: सुरेश जी, यकीन मानिए, आपको निराश कर हमारा दिल भी दुखी है, लेकिन कई बातें हमारे वश में नहीं होती हैं। और देखिए, सुरेश जी ने अपने पत्र में आगे लिखा है, भाई राम कुमार नीरज जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने मेरे प्रति इतना स्नेह, सम्मान और आत्मीयता प्रदर्शित की। आगे क्या संभावना बनती है, यह तो समय ही बताएगा। जीवन में कुछ दरवाजे भले ही बंद दिखाई दें, लेकिन उम्मीद का एक छोटा सा दीपक मन में हमेशा जलता रहता है। बहरहाल, एक बात आज भी उतनी ही दृढ़ता से कह सकता हूँ, जब तक सांसों में सांस है, हिंदी के प्रति हमारा प्रेम और हिंदी सेवा का ये साथ यूं ही अनवरत बना रहेगा। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, ये रिश्ता और ये समर्पण कभी कम नहीं होगा। आपकी स्नेह व आत्मीयता के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: सुरेश जी, आपको भी अनेक धन्यवाद. आप जैसे श्रोताओं का निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ही हमारा संबल और हौसला है.
0: जी बिल्कुल सही कहा. और देखिए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हमारे प्रिय श्रोता मित्र आर एस विजय कुमार ने सुरेश जी की जापान यात्रा की ख्वाहिश पर लिखा है, 2 अगस्त के चेरी के देश से कार्यक्रम में रेडियो जापान के बहुत ही पुराने श्रोता एवं मेरे घनिष्ठ मित्र सुरेश अग्रवाल जी के पत्र का जवाब देते हुए आपने उन्हें जापान आने का निमंत्रण दिया तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया. लेकिन आपने जब ये कहा कि वे अगर जापान घूमने आए तब वहाँ जापान में घूमने का सारा प्रबंधन रेडियो जापान हिंदी सेवा के सदस्य करेंगे, ये बात सुनकर तो मन एकाएक ठंडा पड़ गया. दरअसल मुझे और सुरेश अग्रवाल जी को बड़ी आशा थी कि NHK हिंदी विभाग की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने बहुत ही पुराने एवं नियमित श्रोताओं के लिए कुछ विशेष आकर्षण होगा. हम तो बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे. अगर हमें निजी तौर पर कभी जापान भ्रमण करने का अवसर मिला तो हम जरूर आपका आश्रय लेंगे और NHK स्टूडियोज में भी आप सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे.
2: RS विजय कुमार जी, जरूर जरूर जरूर पधारे, हम सभी आपके स्वागत में तैयार खड़े मिलेंगे. जहां तक NHK वो जापान से हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ मनाने की है तो उसमें पूर्व प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए यादों के झरोखे में झांका गया था. यकीन माने वो भी आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने जितना ही कठिन था.
1: सही कहा. क्योंकि इन 7 दशकों में प्रसारण और रिकॉर्डिंग आदि के तरीकों और मशीनों में जबरदस्त बदलाव हुआ है.
0: जी बिल्कुल. और RS विजय कुमार जी ने आगे लिखा है, इस पत्र के माध्यम से मैं 28 जुलाई को दक्षिणी जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर में आए भीषण भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ. सचमुच जापानी प्रशासन और जापानी लोगों की दाद देनी होगी कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में और उनका सामना करने में वे कितने सतर्क रहते हैं. NHK हिंदी के वेबसाइट पर आपने इस भूकंप के कुछ तस्वीरें जो साझा किए उसे देखकर तो मन विचलित हो गया. जब तस्वीरों को साझा करने की बात चली तो एक वीडियो पर अपनी बात रखना चाहूंगा जिसे हाल ही में आपने साझा किया. सांसा ओदोरी उत्सव के वीडियो में नर्तकों ने जिस प्रकार से बांसुरी एवं ढोल बजाते हुए अपना नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया वो सचमुच एक भव्य दृश्य था. ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये रोमांचकारी नृत्य जापान की एक प्राचीन एवं पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रस्तुत करते हैं.
1: विजय कुमार जी, वाकई जापान में जिस साहस और तत्परता से आपदाओं से निपटा जाता है वो प्रशंसा योग्य है. कुमामोतो भूकंप के समय एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी. डॉक्टरों और नर्सों ने जिस साहस से रोगी को बचाने की कोशिश की उसकी वीडियो फेसबुक पर साझा की गई थी.
2: फेसबुक पर कुमामोतो और कोलंबिया के हालिया भूकंप पर कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है. अस्पताल डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा पर माही मुकेश वादी, अशोक थापियाल, हितेश सोलंकी, बलवंत सिंह, दीपेश बसनेत, विद्या झा, अमोल पवार, सोनू राठौर, सुषमा सिन्हा, लीला देवी, मंजू ठाकुर, पूजा जायसवाल ने इमोजी के जरिए आभार व्यक्त किया है. सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टरों की इस निष्ठा को देखकर लगता है कि सच्ची

0: आलोक शुक्ला लिखते हैं कि ये मुझे दुख से भर देता है, अणुबम हमले के पीड़ितों को भारत की ओर से गहरी संवेदना। भारत और जापान महान देश हैं और दोनों के बीच मैत्री हमेशा प्रगाढ़ रहेगी।
1: और अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देशसई में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ये एक लाइन का पत्र है धर्मपाल पनिहार जी का। लिखते हैं, जापान में रेल यात्रा के प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने की कृपा करें।
0: अरे वाह धर्मपाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। जापान की सुचारू रेल व्यवस्था, व्यापक नेटवर्क और समय की पाबंदी के किस्से तो जग जाहिर है। ये जापान के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है जो लोगों के दैनिक जीवन और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है।
1: जी, जापान के उत्तर में होकाइडो से लेकर नीचे दक्षिण में क्यूशु तक रेल की पटरियों का व्यापक जाल बिछा है। देश के किसी भी कोने में घूमने जाना हो तो यकीनन उसके निकट तक रेल सेवा जरूर मिल जाएगी।
0: वाकई, और समय की इतनी पाबंद की क्या ही कहें, 15 सेकंड की देरी हो जाए तो उसके लिए भी माफी मांग ली जाती है।
3: सही कहा। रेल सेवा की पाबंदी ऐसी है कि ट्रेन की रवानगी के समय से आप घड़ी मिला सकते हैं। इसके चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। टोक्यो महानगर और वृहद टोक्यो में रेल सेवा का बहुत घना जाल है, जिसमें सतह पर चलने वाली जापान रेलवे तथा भूमिगत रेलवे सेवा, टोक्यो मेट्रो और निजी कंपनियों की अनेक ट्रेनें हैं जो शहर के कोने कोने तक सही समय पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। फिर चाहे दफ्तर जाना हो या स्कूल या फिर शॉपिंग, सभी जगह ट्रेन से आराम से जाया जा सकता है।
1: जी, रेल सेवा टोक्यो जैसे महानगर की रीढ़ है। कितने लोग हैं जो टोक्यो से बाहर रहते हैं और हर रोज ट्रेन से काम करने शहर आते हैं। हमारे सभी साथी भी आज क्या हमेशा ही ट्रेन से ही दफ्तर आ पहुंचते हैं।
0: जी हाँ, टोक्यो जैसे शहर में तो गाड़ी रखने की भी आवश्यकता नहीं है, मेट्रो और ट्रेन से हर जगह पहुंच जाओ। इस शानदार सेवा के साथ ही इनकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ना, वो है हर ट्रेन में जबरदस्त सफाई। ट्रेन के अंदर और बाहर स्टेशन पर पूरी साफ सफाई दिखती है, जबकि स्टेशनों पर आसानी से कचरा पात्र नहीं मिलता है।
3: ट्रेनों की बात हो और जापान की प्रसिद्ध सुपर फास्ट ट्रेन शिंकानसन को आप कैसे भूल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
3: तोकाइडो रेल सेवा से इसका जाल बिछना शुरू हुआ था। 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। तब से तोहोकु, होकुरिकु और क्यूशु आदि तक इनका विस्तार हुआ है। रूट के अनुसार इनकी रफ्तार 280 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है।
1: यानी टोक्यो से ओसाका की 500 किलोमीटर की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी। सुबह ओसाका काम से जाओ और रात को वापस घर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कमाल है। दिन के सबसे व्यस्त समय में टोक्यो से ओसाका के लिए 1 घंटे में 13 ट्रेन चलती है, यानी हर 5 मिनट में एक ट्रेन जो क्योतो, शिजुओका, नागोया जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
0: अभी देखिए ना, देश भर में उबोन की छुट्टियां चल रही हैं। इन दिनों अधिकांश लोग अपने गृह नगर जाते हैं, इसलिए शिंकानसेन हो या मेट्रो, हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। फिर भी कोई देरी नहीं, ना कोई धक्का मुक्की। जानती है 1964 में शिंकानसेन की शुरुआत से अब तक 10 अरब से ज्यादा यात्री इसमें बैठ चुके हैं, लेकिन दुर्घटना की दर ना के बराबर।
3: जी वो तो है। और देखिए, भारत के कितने शहरों की मेट्रो सेवा भी तो जापानी तकनीक से ही बनी है।
0: जी बिल्कुल।
3: दिल्ली में मेट्रो के बिना जीवन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पुरानी दिल्ली से गुड़गांव तक का सफर करीब 1 घंटे में आसानी से तय हो जाता है। सड़क के ट्रैफिक जाम की कोई चिंता नहीं है अब।
1: मुझे तो अहमदाबाद से मुंबई तक शिंकानसेन चलने का इंतजार है। इसमें जापानी तकनीक ही नहीं, लोगों को प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: अच्छा ये तो बात हुई असली ट्रेनों की, लेकिन बच्चों में शिंकानसेन के खिलौने

0: उन्हें कितने लोकप्रिय हैं। पेंसिल, रबर, स्केल, बैग, हर तरह का सामान मिलेगा जिस पर उनकी प्रिय शिंकांसेन बनी है।
1: उम्मीद है धर्मपाल जी के साथ ही हमारे अन्य श्रोता मित्रों को भी जापान की रेल सेवा पर ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप हमारी वेबसाइट पर आज के कार्यक्रम को एक सप्ताह तक सुन सकते हैं।
0: और हाँ, वेबसाइट और फेसबुक पर कार्यक्रम की लिंक को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी साझा करें। और कमाईनी जी, रंजना जी, इस सवाल के बाद आज मुझे अपने एक प्रिय श्रोता मित्र नजीमुद्दीन जी की याद आ गई, जो अपने पत्रों में हमेशा एक सवाल किया करते थे।
1: वाकई उनकी इन दिनों अनुपस्थिति बहुत हम महसूस कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: साथ ही अगर आप जापानी ट्रेनों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर रेलवे किंगडम जापान समय की पाबंद शिंकांसेन और जापान रेलवे जनरल श्रृंखला भी जरूर देखें, जहां आपको रेल सेवा में आ रही नवीनतम तकनीक आदि पर विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में है लेकिन साथ में हिंदी सबटाइटल्स हैं।
2: हमने ट्रेनों पर इतनी बात की तो जाने से पहले क्यों ना इन्हीं पर एक जापानी गीत सुना जाए।
1: क्यों नहीं, तो आइए सुनते हैं ये गीत देंशा नो मादो कारा, यानी ट्रेन की खिड़की से, जिसे स्वरबद्ध किया है बैंड ग्रुप बैक नंबर ने।

0: मित्रों, आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को,
1: कामायनी सिंह को
2: और रंजना सिंह को
3: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: उगते सूर्य के देश से सभी श्रोताओं को रंजना सिंह का भी नमस्कार।
2: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: कामायनी जी, रंजना जी, आपको और हमारे सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत बधाई।
1: सभी को अनेक शुभेच्छा। और आप बताइए, आपने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया?
0: देखिए, भारत से दूर इतना जोर शोर से तो नहीं मना सकते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय दूतावास में झंडा रोहण समारोह में जरूर शिरकत कर सकते हैं। और जब तिरंगे को लहराता देखती हूँ ना, तो मन में खुशी और गर्व महसूस होता है।
2: जी, सही कहा आपने। लेकिन एक ही दिन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने की बजाय, मेरा मानना है कि हम अपने दैनिक कृत्यों से देश प्रेम दिखा सकते हैं।
0: विचार तो बहुत बढ़िया है, तो चलिए अपने श्रोता मित्रों से ही पूछा जाए कि उनके विचार में देश प्रेम के लिए क्या करना चाहिए।
2: अगले पत्र में जरूर बताएं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। झारखंड जमशेदपुर से SP शर्मा जी के इस पत्र से। शर्मा जी ने योग दिवस पर चरी के देश से कार्यक्रम की प्रस्तुति को बेहद पसंद किया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, लिखते हैं, योग दिवस पर प्रसारित चरी के देश से कार्यक्रम सुना था। इस प्रोग्राम में योग के महत्व के साथ जापानी प्रैक्टिशनर द्वारा भारत में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने और इतिहास रचने की प्रेरक कहानी सुनी। बढ़िया लगा। योग तो जीवन में नया जोश और उत्साह भर देता है और जीवन को ही नया बना देता है। इस तरह की प्रेरक कहानियों को आगे भी सुनाते रहिए। शुक्रिया और शुभकामनाएं।
1: शर्मा जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार, धन्यवाद। वाकई योग जीवन में नई ऊर्जा भर देता है।
0: जी हाँ, और इस साल की थीम तो हम सभी के लिए जरूरी है, स्वस्थ आयु के लिए योग। वैसे शर्मा साहब, मीनाक्षी मियोको जी के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो अब वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको भी जरूर देखें। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से योग को अपनाया है, वो वाकई प्रेरणादायक है।
2: मित्रों, आप सब भी जरूर देखें। इसकी लिंक NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के फेसबुक पेज पर पिन की गई है। इस पेज पर जाते ही सबसे ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगी।
0: अच्छा, आप तो देखें ही, अपने मित्रों परिजनों के साथ भी इस लिंक को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग इससे प्रेरणा लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाएं। रंजना जी, देख रही हो, आपने अगला पत्र उठा भी लिया है, किसका खत है?
1: जी, ये पत्र है ओडिशा के सिंगा से हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल जी का।
0: अच्छा।
1: लिखते हैं, 9 अगस्त को साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के अंतर्गत मेरे पत्र के उत्तर को सुनकर मन कुछ देर के लिए भीतर तक उदास हो गया। मन को थोड़ी निराशा अवश्य हुई, क्योंकि वर्षों से जुड़े इस आत्मीय रिश्ते में कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा भी मन में पलती रही थी। फिर भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी भावनाओं को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया और मेरे मन की बात को श्रोताओं तक पहुँचने का अवसर दिया।
0: सुरेश जी, यकीन मानिए, आपको निराश कर हमारा दिल भी दुखी है, लेकिन कई बातें हमारे वश में नहीं होती हैं। और देखिए, सुरेश जी ने अपने पत्र में आगे लिखा है, भाई राम कुमार नीरज जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने मेरे प्रति इतना स्नेह, सम्मान और आत्मीयता प्रदर्शित की। आगे क्या संभावना बनती है, यह तो समय ही बताएगा। जीवन में कुछ दरवाजे भले ही बंद दिखाई दें, लेकिन उम्मीद का एक छोटा सा दीपक मन में हमेशा जलता रहता है। बहरहाल, एक बात आज भी उतनी ही दृढ़ता से कह सकता हूँ, जब तक सांसों में सांस है, हिंदी के प्रति हमारा प्रेम और हिंदी सेवा का ये साथ यूं ही अनवरत बना रहेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ये रिश्ता और ये समर्पण कभी कम नहीं होगा। आपकी स्नेह व आत्मीयता के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: सुरेश जी, आपको भी अनेक धन्यवाद. आप जैसे श्रोताओं का निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ही हमारा संबल और हौसला है.
0: जी बिल्कुल सही कहा. और देखिए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हमारे प्रिय श्रोता मित्र आर एस विजय कुमार ने सुरेश जी की जापान यात्रा की ख्वाहिश पर लिखा है, 2 अगस्त के चेरी के देश से कार्यक्रम में रेडियो जापान के बहुत ही पुराने श्रोता एवं मेरे घनिष्ठ मित्र सुरेश अग्रवाल जी के पत्र का जवाब देते हुए आपने उन्हें जापान आने का निमंत्रण दिया तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया. लेकिन आपने जब ये कहा कि वे अगर जापान घूमने आए तब वहाँ जापान में घूमने का सारा प्रबंधन रेडियो जापान हिंदी सेवा के सदस्य करेंगे, ये बात सुनकर तो मन एकाएक ठंडा पड़ गया. दरअसल मुझे और सुरेश अग्रवाल जी को बड़ी आशा थी कि एनएचके हिंदी विभाग की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने बहुत ही पुराने एवं नियमित श्रोताओं के लिए कुछ विशेष आकर्षण होगा. हम तो बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे. अगर हमें निजी तौर पर कभी जापान भ्रमण करने का अवसर मिला तो हम जरूर आपका आश्रय लेंगे और एनएचके स्टूडियोज में भी आप सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे.
2: आरएस विजय कुमार जी, जरूर जरूर जरूर पधारे, हम सभी आपके स्वागत में तैयार खड़े मिलेंगे. जहां तक एनएचके वो जापान से हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ मनाने की है तो उसमें पूर्व प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए यादों के झरोखे में झांका गया था. यकीन माने वो भी आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने जितना ही कठिन था.
1: सही कहा. क्योंकि इन 7 दशकों में प्रसारण और रिकॉर्डिंग आदि के तरीकों और मशीनों में जबरदस्त बदलाव हुआ है.
0: जी बिल्कुल. और आर एस विजय कुमार जी ने आगे लिखा है, इस पत्र के माध्यम से मैं 28 जुलाई को दक्षिणी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ. सचमुच जापानी प्रशासन और जापानी लोगों की दाद देनी होगी कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में और उनका सामना करने में वे कितने सतर्क रहते हैं. एनएचके हिंदी के वेबसाइट पर आपने इस भूकंप के कुछ तस्वीरें जो साझा किए उसे देखकर तो मन विचलित हो गया. जब तस्वीरों को साझा करने की बात चली है तो एक वीडियो पर अपनी बात रखना चाहूंगा जिसे हाल ही में आपने साझा किया. सांसा ओदोरी उत्सव के वीडियो में नर्तकों ने जिस प्रकार से बांसुरी एवं ढोल बजाते हुए अपना नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया वो सचमुच एक भव्य दृश्य था. ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यह रोमांचकारी नृत्य जापान की एक प्राचीन एवं पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रस्तुत करते हैं.
1: विजय कुमार जी, वाकई जापान में जिस साहस और तत्परता से आपदाओं से निपटा जाता है वो प्रशंसा योग्य है. कुमामोतो भूकंप के समय एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी. डॉक्टरों और नर्सों ने जिस साहस से रोगी को बचाने की कोशिश की उसकी वीडियो फेसबुक पर साझा की गई थी.
2: फेसबुक पर कुमामोतो और कोलंबिया के हालिया भूकंप पर कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है. अस्पताल डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा पर माही मुकेश वादी, अशोक थापियाल, हितेश सोलंकी, बलवंत सिंह, दीपेश बसनेत, विद्या झा, अमोल पवार, सोनू राठौर, सुषमा सिन्हा, लीला देवी, मंजू ठाकुर, पूजा जायसवाल ने इमोजी के जरिए आभार व्यक्त किया है. सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टरों की इस निष्ठा को देखकर लगता है कि सच्ची सेवा करने वाले लोग अब भी हैं. गजधारा और आशा कटारिया ने डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा है.
1: वाकई अस्पताल के सभी लोगों ने विपत्ति के समय बड़ी सहजता दिखाई थी, सजगता से काम किया था. जापान पर बरसी अणु बम विभीषिका को 81 वर्ष बीत गए हैं. हिरोशिमा और नागासाकी में स्मृति सभाओं का आयोजन किया गया जिनकी वीडियो पर भी कई लोगों के संदेश मिले हैं. राहुल भारद्वाज लिखते हैं, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं.
0: वीरा जी लिखती हैं, एक ऐसी दुनिया की कामना करती हूँ जहाँ फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो, परमाणु खतरा रहित संसार की कामना में सब साथ आएं.

0: कार्यक्रम चेरी के देशसई में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ये एक लाइन का पत्र है धर्मपाल पनिहार जी का। लिखते हैं, जापान में रेल यात्रा के प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने की कृपा करें।
1: अरे वाह धर्मपाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। जापान की सुचारू रेल व्यवस्था, व्यापक नेटवर्क और समय की पाबंदी के किस्से तो जग जाहिर है। ये जापान के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है जो लोगों के दैनिक जीवन और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है।
0: जी, जापान के उत्तर में होकाइडो से लेकर नीचे दक्षिण में क्यूशू तक रेल की पटरियों का व्यापक जाल बिछा है। देश के किसी भी कोने में घूमने जाना हो तो यकीनन उसके निकट तक रेल सेवा जरूर मिल जाएगी।
1: वाकई, और समय की इतनी पाबंद की क्या ही कहें, 15 सेकंड की देरी हो जाए तो उसके लिए भी माफी मांग ली जाती है।
2: सही कहा। रेल सेवा की पाबंदी ऐसी है कि ट्रेन की रवानगी के समय से आप घड़ी मिला सकते हैं। इसके चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। टोक्यो महानगर और वृहद टोक्यो में रेल सेवा का बहुत घना जाल है जिसमें सतह पर चलने वाली जापान रेलवे तथा भूमिगत रेलवे सेवा, टोक्यो मेट्रो और निजी कंपनियों की अनेक ट्रेनें हैं जो शहर के कोने कोने तक सही समय पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। फिर चाहे दफ्तर जाना हो या स्कूल या फिर शॉपिंग, सभी जगह ट्रेन से आराम से जाया जा सकता है।
0: जी, रेल सेवा टोक्यो जैसे महानगर की रीढ़ है। कितने लोग हैं जो टोक्यो से बाहर रहते हैं और हर रोज ट्रेन से काम करने शहर आते हैं। हमारे सभी साथी भी आज क्या हमेशा ही ट्रेन से ही दफ्तर आ पहुंचते हैं।
1: जी हाँ, टोक्यो जैसे शहर में तो गाड़ी रखने की भी आवश्यकता नहीं है, मेट्रो और ट्रेन से हर जगह पहुंच जाओ। इस शानदार सेवा के साथ ही इनकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ना, वो है हर ट्रेन में जबरदस्त सफाई। ट्रेन के अंदर और बाहर स्टेशन पर पूरी साफ सफाई दिखती है, जबकि स्टेशनों पर आसानी से कचरा पात्र नहीं मिलता है।
2: ट्रेनों की बात हो और जापान की प्रसिद्ध सुपर फास्ट ट्रेन शिंकानसन को आप कैसे भूल सकते हैं?
1: जी बिल्कुल।
2: टोक्यो रेल सेवा से इसका जाल बिछना शुरू हुआ था। 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। तब से तोहोकु, होकुरिकु और क्यूशू आदि तक इनका विस्तार हुआ है। रूट के अनुसार इनकी रफ्तार 280 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है।
0: यानी टोक्यो से ओसाका की 500 किलोमीटर की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी। सुबह ओसाका काम से जाओ और रात को वापस घर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कमाल है। दिन के सबसे व्यस्त समय में टोक्यो से ओसाका के लिए 1 घंटे में 13 ट्रेन चलती है, यानी हर 5 मिनट में एक ट्रेन जो क्योतो, शिजुओका, नागोया जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
1: अभी देखिए ना, देश भर में उबोन की छुट्टियां चल रही हैं। इन दिनों अधिकांश लोग अपने गृह नगर जाते हैं, इसलिए शिंकानसेन हो या मेट्रो, हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। फिर भी कोई देरी नहीं, ना कोई धक्का मुक्की। जानती है 1964 में शिंकानसेन की शुरुआत से अब तक 10 अरब से ज्यादा यात्री इसमें बैठ चुके हैं, लेकिन दुर्घटना की दर ना के बराबर।
2: जी वो तो है। और देखिए, भारत के कितने शहरों की मेट्रो सेवा भी तो जापानी तकनीक से ही बनी है।
1: जी बिल्कुल।
2: दिल्ली में मेट्रो के बिना जीवन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पुरानी दिल्ली से गुड़गांव तक का सफर करीब 1 घंटे में आसानी से तय हो जाता है। सड़क के ट्रैफिक जाम की कोई चिंता नहीं है अब।
0: मुझे तो अहमदाबाद से मुंबई तक शिंकानसेन चलने का इंतजार है। इसमें जापानी तकनीक ही नहीं, लोगों को प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: अच्छा, ये तो बात हुई असली ट्रेनों की, लेकिन बच्चों में शिंकानसेन के खिलौने कितने लोकप्रिय हैं। पेंसिल, रबर, स्केल, बैग, हर तरह का सामान मिलेगा जिस पर उनकी प्रिय शिंकानसेन बनी है।
2: उम्मीद है धर्मपाल जी के साथ ही हमारे अन्य श्रोता मित्रों को भी जापान की रेल सेवा पर ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप हमारी वेबसाइट पर आज के कार्यक्रम को 1 सप्ताह तक सुन सकते हैं।
1: और हाँ, वेबसाइट और फेसबुक पर कार्यक्रम की लिंक को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी साझा करें। और कमाईनी जी, रंजना जी, इस सवाल के बाद आज मुझे अपने एक प्रिय श्रोता मित्र नजीमुद्दीन जी की याद आ गई, जो अपने पत्रों में हमेशा एक सवाल किया करते थे।
2: वाकई उनकी इन दिनों अनुपस्थिति बहुत हम महसूस कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: साथ ही अगर आप जापानी ट्रेनों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर रेलवे किंगडम जापान समय की पाबंद शिंकानसेन और जापान रेलवे जनरल श्रृंखला भी जरूर देखें, जहां आपको रेल सेवा में आ रही नवीनतम तकनीक आदि पर विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में है लेकिन साथ में हिंदी सबटाइटल्स हैं।
1: हमने ट्रेनों पर इतनी बात की तो जाने से पहले क्यों ना इन्हीं पर एक जापानी गीत सुना जाए।
0: क्यों नहीं, तो आइए सुनते हैं ये गीत देंशा नो मादो कारा यानी ट्रेन की खिड़की से, जिसे स्वरबद्ध किया है बैंड ग्रुप बैक नंबर ने।

0: मित्रों, आपकी का आनंद ले और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को,
1: कामायनी सिंह को
2: और रंजना सिंह को
3: सायोनारा, नमस्कार।

0: आपके स्टॉल पर मौजूद हैं। कुछ स्टॉल्स पे मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी कतार है और कुछ पे रश थोड़ा कम है।
1: अरे बहुत सारे जापानी लोग भी यहाँ कतार में लगे हैं, तो जापानियों से पूछिए उनको खाना कैसा लगा।
0: मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा, पूछते हैं उनसे।
1: चलिए आइए पूछते हैं।
0: आपने कौन सा पाकिस्तानी खाना खाया और क्या ये मज़ेदार था? सुमसेन दोनों पाकिस्तान और फूड और तब मशतका ओशी देश का ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी बिरयानी का मजा लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा।
2: जी सामिन, एक पाकिस्तानी माफ कीजिएगा, एक जापानी फैमिली पाकिस्तानी खाना खा रही है, तो मैंने इनसे पूछना है कि आपको पाकिस्तानी खाने की क्या चीज़ पसंद है, और बाकी चीज़ें भी इनके पास जो पड़ी हैं उनकी भी तफसील पूछते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम।2ヶ月前にパキスタンに行きまして、その時にビリヤニがもう大好きになって帰ってきました。
1: जी सामिन, उन्होंने हमें बताया कि वो 2 महीने पहले पाकिस्तान गई थी, वहाँ उन्होंने बिरयानी खाई जो उसे बड़ी पसंद आई, तो इसलिए उन्होंने यहाँ आके इंतखाब किया कि बिरयानी खाएं, और साथ जो पानी पूरी उन्होंने सामने रखी है खरीद के, वो कहती है वो मैं पहली बार खा रही हूँ। सामिन, बड़ी लंबी कतार है और एक जापानी खातून बड़े सब्र से, खातून ने एक लड़की, प्यारी सी लड़की बड़े सब्र से कतार में लगी है। मैं उनसे पूछूंगी कि आपको पाकिस्तान में खाना अच्छा लगता है या पहली दफ़ा खा रही है या क्या उनका राय है।
4: 初めてサモサとパニプリを食べます。今日パキスタン料理初めてなんですけど、今年の9月に友達とパキスタンに旅行に行くので。
1: अच्छा जी सामिन, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहली दफ़ा पाकिस्तानी खाना खाने लगी हैं और समोसा और पानी पूरी खाने का इरादा करके आई हैं, और कहती हैं कि वो सितंबर में शायद पाकिस्तान जाएंगी।
5: इस फेस्टिवल ने पाकिस्तान और जापान दोनों के रवायती सकाफती फ़नून के ज़रिए एक दूसरे के पहलुओं को जानने की कोशिश की है और फ़नून को उजागर करने की कोशिश की है। इसमें यहाँ मौसीकी का अहतमाम है, रक्स के मुजाहरे हो रहे हैं और मेहंदी का इवेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं जापानी लोगों को पाकिस्तानी रवायात से मुतासिर कर मुतारिफ कराने के लिए है।
0: सामीन, मेरे बैकग्राउंड में आप रबाब की खूबसूरत धुन सुन सकते हैं।
5: इस वक्त स्टेज पे एक दफ बजाने वाले हैं, एक तबला बजाने वाले हैं, 3 रुबाबी हैं और उनमें से एक गिटार भी बजा रहे हैं।
0: अगर देखा जाए कि बतौर जापानी मेरी नज़र में वो बेहतरीन अंदाज में बजा रहे हैं, और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि हमारे रात मौसीकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जापान में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं।
5: ये जापानी खातून बड़े इन्हबाग से सुन रही हैं, तो आइए उनके तासरात मालूम करते हैं। इस म्यूज़िक के बारे में ये जापानी खातून ने मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार ये म्यूज़िक सुना है और बड़ा तवानाई बख्श लग रहा है, उनको लग रहा है कि उसमें तवानाई इसमें भरती है।
0: तो दोस्तों, जापानी खातून के तासरात आपने सुने, अब यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं और वो इस मौसीकी के बारे में क्या कहते हैं। जी अपना तारुफ कीजिएगा, आप कहाँ से हैं?
6: हम पाकिस्तान से हैं, पहली दफ़ा आए हैं, सगामी आरा से आए हैं इधर ना।
0: अच्छा,
6: तो बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है।
0: ये जो पाकिस्तानी आलात मौसीकी हैं, ये जो जापानी बजाने वाले हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में, इनकी महारत के बारे में?
6: ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत प्यार से चला रहे हैं।
0: अच्छा,
6: हम इंजॉय,
0: आप इंजॉय कर रहे हैं?
6: हाँ इंशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
1: सामिन, फ़न का मुजाहिरा तो हमने देख लिया, क्यों ना आप इन फनकारों से भी आपकी मुलाकात कराएं, क्या ख्याल है खलील साहब?
0: जी बिल्कुल, अभी टोक्यो सूफी ग्रुप के सरबराह उवैदा ताकायुकी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जाके उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप हमें ये बताइए कि आप इतने आलात मौसीकी एक साथ बजा लेते हैं, कहाँ से सीखा, कितना अरसा लगा और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपका?
7: अतशी वो अमेरिका नो बाकरी ओंगा कोई तो टुकड़ो दे तो वकाई तो किनी किसोतना ओंगा को री रोन तो चिशकी माना भी मस्ता सुनो को सकाई तभी।
0: ये कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका में 15 साल की उम्र में गिटार और बेस की बुनियादी तालीम हासिल की, इसलिए रबाब और सितार वगैरह बजाना मेरे लिए आसान था। मैं मौसीकी बना भी सकता था लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसलिए मैं पाकिस्तान गया, वहाँ एक उस्ताद के साथ मैंने शागिर्दी की और उस कम्युनिटी के साथ मिल के प्रैक्टिस करके मैं अब भी मुसलसल सीखता रहता हूँ।
1: खलील साहब, अब बाकी स्टॉल भी देख लें।
8: बाकी स्टॉल भी देख लेते हैं जी, आइए।
1: यहाँ कपड़े फरोख्त हो रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान
2: ये सब पाकिस्तानी है ना
9: मेरे ख्याल में शायद कपड़े हैं तो पाकिस्तानी होंगे
2: हाँ ये कुर्ता है ना
9: बिल्कुल
2: वो देखें
9: बहुत अच्छे
2: उधर कढ़ाई वाले भी कपड़े हैं अच्छा
9: वो ये देखें ये
2: यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है अच्छा ये ख्वातीन हाथों पे मेहंदी लगा रही हैं वाह
9: ये तो हाथों पे लगा रही थी एक जगह मैंने देखा खातून पैरों पे भी मेहंदी लगवा रही थी
2: चले आइए जरा पास चले जी सामिन इस खातून से मैं पूछती हूँ उनको मेहंदी लगवाना कैसे लग रहा है और क्या वाकई वो पहली बार मेहंदी लगवा रही हैं जब हजमित है मेहंदी
10: वाहमे
2: आपको मेहंदी लगा के अब कैसा लग रहा
10: है 自分で書くよりももうずっと上手なので嬉しくて嬉しくて
2: जी सामिन मेहंदी लगवाने वाली खातून से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो पहली दफ़ा नहीं मेहंदी लगवा रही पिछले साल भी इसी फेस्टिवल पे मौके पे उन्होंने मेहंदी लगवाई थी और वो कहती हैं कि इतना अच्छा मैं खुद नहीं लगा सकती पर अब ये कोई फनकार मेरे लगा रहा है तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है सामिन ये बच्ची बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं क्या बेल बूटे बना रही हैं तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इनसे अस्सलाम वालेकुम
11: वालेकुम सलाम
2: आपका नाम क्या है
11: मेरा नाम रिहाना है
2: आपका कैसा चल रहा है लोग काफ़ी लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और मुझे बताएं कि लोग किस किस्म के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद करते हैं
11: बहुत अच्छा चल रहा है ज़्यादातर लोग इस तरह के वन पॉइंट लगवा रहे हैं जापनीज़ लोग तो इस तरह मेहंदी नहीं लगवाते जिस तरह पाकिस्तानी लगवाते हैं तो वन पॉइंट फूल वगैरह या इस तरह स्टार्स और मून्स इस तरह के डिज़ाइन लगवा रहे हैं
2: बहुत मसरूफ़ हैं आप सुबह से कि कोई कोई कस्टमर आ रहा है
11: काफ़ी मसरूफ़ हैं जापनीज़ बहुत इंटरेस्टेड है ना कि क्या है किस तरह का है इनको नहीं पता ना जापान में नहीं होता मेहंदी तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ये
2: बहुत शुक्रिया
11: थैंक यू सो मच
9: दरअसल इस साल यहाँ NHK की जानिब से भी फेस्टिवल में एक बूथ लगाया गया था एक स्टॉल सजाया गया था जिसमें लोगों से एक सवालनामा भरवाया जा रहा था कि हम जापानी मुआशरे के साथ मानूस होने के लिए क्या कर सकते हैं
2: सामिन ये सवालनामे का मकसद ये था कि किसी भी मुआशरे में जब दो मुख्तलिफ सकाफतें मिलजुल के रहती हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात मुख्तलिफ ज़रूर होती है तो उसकी वजह से कभी ख़तरा होता है कि कोई तनाव ना हो जाए तो कोई गलतफहमी ना हो जाए तो इस सब से गुरेज के लिए हमने फ़ैसला किया कि इसके लिए हम लोगों से कैसे उनकी राय दरियाफ़्त कर सकते हैं
9: दरअसल अब हमारे लिए ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तानी और जापानी कम्युनिटी एक साथ मिलकर हम आहंगी के साथ रह सकें
2: और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने बूथ में कुछ इंटरव्यूज़ किए और वहाँ हमने आने वालों से पूछा कि जापानी मुआशरे से मानूस होने के लिए आप क्या कर सकते हैं और अब हम नतायज का ऐलान करेंगे
9: तो ये नतायज मेरे सामने हैं इस सर्वे में सबसे ज़्यादा जवाब दहिंदगान के ख्याल में मकामी कवायद का एहतराम करना मसलन कचरे की छांटी और उठाने के दिनों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा अहम काम है तकरीबन इतने ही लोगों का कहना है कि जापानी ज़बान में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट इस ऑप्शन को मिले हैं कि आदाब मुआशरत से आगाही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसलन ट्रेन में फ़ोन पर बातचीत से इज्तनाब करना और मिलते हुए सलाम करना वगैरह इस मौके पर हमने लोगों के साथ डिटेल में गुफ्तगू की है कि इन तमाम मौजूदात के बारे में तो वो भी आपको सुनाते हैं
12: मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ
13: अच्छा
12: और जापान में तकरीबन 9 साल से हूँ और यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट आया था
13: अच्छा।
12: PhD के बाद मैं अभी जुनतेंडो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर
9: यहाँ पे सर हम जानना चाह रहे हैं कि जापानी मुआशरे से मानूस होने के लिए यानी मिक्सअप होने के लिए कौन से 3 काम हैं जो पाकिस्तानियों या गैर मुल्कियों के लिए आप समझते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 1 ये है कि मकामी कवायद का एहतराम मसलन कचरे की छांटी के दिन मुकर्रर होते हैं और उन दिनों का ख्याल रखना दूसरा मकामी त्यौहार होते हैं उनमें शिरकत जापानी ज़बान सीखना है उसके अलावा आदाब मुआशरत है मसलन ट्रेन वगैरह में बात करने से ये लोग इस्तेनाब करते हैं रजाकाराना सरगर्मियों में वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में शिरकत करना है और जापानियों से दोस्ती आपके ख्याल में 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं
12: देखें जी सबसे पहले जब ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है जब तक ज़बान नहीं आएगी तो हम लोगों को समझ नहीं सकेंगे
9: ठीक
12: और ये कवायद वगैरह जो है ये भी हम तभी फॉलो कर सकेंगे उसको जान सकेंगे जब हमें ज़बान आएगी
14: मेरा नाम तस्मिया है और मैं बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर हूँ आई विल से कि जापानी से दोस्ती करना ये बहुत आपको हेल्प आउट करता है जापानी के साथ मिलने और फिर आप कल्चर भी सीखते हैं इस तरीके से एक दूसरे से और आप अपना खुद का भी सिखाते हैं और उनसे भी खुद सीखते हैं तो आई विल से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग
15: मेरा नाम मलिक मुर्तजा है और पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करा हुआ हूँ सबसे पहला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मकामी जो कवायद हैं इनका एहतराम करें
9: ठीक है
15: अक्सर ये होता है कि इनको मसला होता है फॉरेनर से क्योंकि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते ہمارے معاشرے میں اس طرح اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. یہ تو اس کو اپنا ایک مذہب سمجھتے ہیں, صفائی جو ہے ہر چیز اس کا پراپر خیال رکھتے ہیں. ایون کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں ہم خود بخود اس طرح اڈاپٹ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پڑتا, یاد آئے تھا کہ میں نے رات کو بھی روڈ اگر کراس کرنا ہے تو اگر سامنے اشارہ لگا ہوا ہے تو میں کراس نہیں کروں گا, حالانکہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی,
9: کچھ بھی نہیں,
15: اس کے باوجود میں نہیں کروں گا. کیونکہ یہ ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیں خود بخود ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں.
13: میرا نام ہمیرا عزیز ہے
9: جی جی,
13: اور میں جاپان میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم غیر ملکیوں کے لیے ایک امبیسڈر ہیں, ناٹ اونلی ہمارے اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے جو فارینرز یہاں ہیں ان سب کے لیے ہم امبیسڈرز ہیں.
9: ٹھیک,
13: تو اگر یہاں کے آداب سے آگاہی نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ پھر امیج خراب ہوتا ہے. تو وہ جو ایک اچھا امیج بنانا ہے غیر ملکیوں کا جاپان میں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں کے جو یہاں کے معاشرتی اقدار ہیں اگر ہم ان سے آگاہی ہوں, ہمیں ان کی پابندی بھی کریں, تو آئی تھنک بہت اچھا ہو سکتا ہے امیج ہم لوگوں کا.
9: صحیح.
16: آپ کا نام سائمہ. دیکھیں ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کلچرز ہوتا ہے آپ کا, یعنی کہ جس چیز جو چیز نہیں کرنا چاہتے, جو چیز جو نہیں پسند کرتے وہ آپ مت کریں. جب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ ان کو فالو کریں جن کو جاپانیز فالو کرتے ہیں. ان میں سب سے بات ہے یہی ہے کہ آپ فون پہ بیٹھ کے بہت اونچی اونچی بات مت کریں, کوئی بہت ضروری ہو تو آپ فون کریں, ملتے ہوئے سلام کریں, مطلب جو جو ان کے رولز ہیں ان کو آپ مسٹ فالو کریں.
17: میرا نام شاہد عزیز ہے, میں یہاں پہ 37 سال سے.
9: 37 سال سے
17: جی. جاپانی سیکھنا,
9: جاپانی سیکھنا,
17: جاپانی اگر آپ نہیں سیکھو گے تو آپ سکسیس نہیں ہوتے اس ملک میں.
18: میرا نام بھیم ہاشم ہے اور میں جاپان میں پیدا ہوں.
9: اچھا
18: جی. میرے خیال میں لینگویج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو لینگویج آتی ہوگی, آپ جاپنیز سے دوستی بھی کر سکتے ہیں اور آپ پھر یہاں پہ ورک بھی کر سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہے لینگویج فرسٹ نمبر پہ.
9: فرسٹ نمبر ہے.
16: اچھا جی. آپ کا نام
19: صبا. جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں کے پھر رولز بھی فالو کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جاپان جیسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر کے رولز فالو کریں اور ادھر کی لینگویج بھی سیکھیں.
20: میرا نام محمد نعمان ہے, میں پاکستان میں کوہاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور فیملی کے ساتھ یہیں پہ مقیم ہوں. جو سب سے ضروری پہلے نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہمیں ان کی زبان اور کلچر سیکھنا.
9: اچھا,
20: کیونکہ اگر ہم ان کی زبان اور کلچر کو ذرا سمجھ لیتے ہیں تو باقی چیزوں کو خود ہی مطلب ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے, دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرنا, بات, یہ لوگ احترام کے طریقے سے ہر کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ چیز کا خیال رکھنا, تو وہ ساری چیزیں ان کے کلچر میں خود ہی ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں.
21: میرا نام حماد علی ہے اور میں جاپان میں پچھلے 4 سال سے ہوں اور میں یہاں پر IT انجینئر ہوں.
9: آپ نے آداب معاشرت سے آگاہی کا انتخاب کیوں کیا؟
21: جی اس لیے کیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک ڈسپلن آپ کو سکھاتے ہیں, ایک ڈسپلن معاشرہ ہے, لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں اور ایک آپ کو سب سے پہلے جو ان کا ملنے کا انداز ہے جس میں وہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں وہ ایک بہت اچھی چیز ہے, جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے.
22: سب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے حاضرین سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ انٹرنیٹ یا ریڈیو پہ کن موضوعات پر ہمارے پروگرام سننا چاہیں گے؟
9: پروگرام کا سب سے مشہور موضوع جس کے بارے میں ہر کوئی دیکھنا اور سننا چاہتا تھا وہ تھا جاپانی زبان سیکھنا. زیادہ دلچسپی کے دیگر موضوعات میں ثقافت اور طرز زندگی اور آفات سے بچاؤ اور تیاری کے موضوعات بھی شامل ہیں.
22: ہم نے اس حوالے سے بھی کئی لوگوں کے انٹرویو کیے,
9: تو آئیے آپ کو سناتے ہیں. آپ ریڈیو یا انٹرنیٹ پر ہماری نشریات سن سکتے ہیں. فی الوقت ہم قدرتی آفات سے بچاؤ کی تیاری, حالات حاضرہ, ثقافت اور طرز زندگی, تجارت, ٹیکنالوجی, جاپانی سیکھیں, جاپانی زبان سکھاتے ہیں, بچوں کا پروگرام کرتے ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, تفریحی پروگرام ہیں, سفر و سیاحت ہے, اسپورٹس ہے, سائنس اور فطرت ہے اور پاپ کلچر اور فیشن ہے. ایز اے پاکستانی, ایز اے اردو بولنے والے, آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کیا سننا چاہتے ہیں یا کیا دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر, ہماری ویب سائٹ پر؟
20: یہاں پہ قوانین, اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں, کمیونٹی ہے, ان کو بدلتے قوانین اور ان چیزوں کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کے لیے حالات حاضر کے متعلق, مطلب جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق اپڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے. تو حالات حاضر,
14: سب سے پہلا تو میں کہوں گی جو ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے, کیونکہ جاپان میں بہت سارے یو نو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ مطلب ہمیں لٹرلی چاہیے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں انفارمیشن کے, ایون وہ اردو میں ہو, کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کو جاپنیز نہیں آتی ہے, انگلش نہیں آتی ہے, تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا نا.
15: آئی تھنک اسپورٹس یہاں بھی ہوتا ہے کہ اسکولز میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ایک چھوٹے سے بچے بھی ہیں, ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں, تو بچے صرف ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک اگر ہم اسپورٹس جو ہے اس سائڈ پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہو.
3: سب سے مین ہے بیسیکلی وہ نمبر ون ہی ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے جو تیاری ہے.
9: صحیح.
3: تو اس سے جو بیسک جو معلومات ہے وہ ہونی چاہیے.
9: ٹھیک.
3: پارٹنرز کو
13: سفر و سیاحت.
9: سفر و سیاحت. اچھا جاپان کے اندر ہے جاپان سے باہر؟
13: آئی تھنک جاپان کے اندر.

0: कौन सी जगह है आप जहाँ देखना चाहती हैं हमारे
1: वो जगह जो अनसीन है?
0: बच्चों के जो प्रोग्राम आपने इंतखाब किया
1: जी,
0: हम अपने प्रोग्रामों के जरिए बच्चों को क्या सिखाएं?
1: मौजूद जैसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
0: मसलन उसमें
1: मसलन के जापानी बच्चे जो हैं उनके अंदर ये बहुत, वो लोग कूट कूट के भर देते हैं
0: सही,
1: लेकिन हमारे बच्चों में हम नहीं कर पाते। तो अगर हमें पता होगा कि किस तरीके से हम ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं, लाइन अप होना, अपनी बारी का इंतजार करना और अपनी हार मान लेना,
2: साफ रखना अपने एरिया,
1: अपने एरिया, हाँ
0: सफाई
1: को नहीं।
3: बिजनेस और टेक्नोलॉजी,
0: बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी,
3: क्योंकि देखें बिजनेस और टेक्नोलॉजी आगे टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, एआई हर किसी को जो है ना समझना ज़रूरी है।
4: अच्छा, मेरे ख्याल से जैसे जो पाकिस्तानी है जिनको अभी लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इधर की न्यूज़ का पता चले, तो उसके लिए तो आई थिंक ये हालात हाजरा है।
0: सर्वे में हिस्सा लेने वाले तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया।
5: सामिन, ये फेस्टिवल पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ मिल बैठने का बल्कि अपनी सकाफत के पोशीदा पहनों की दरियाफ्त लेने का बेहतरीन मौका था, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि देखें जापान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, दोनों के दरमियान मीलों की दूरी है, लेकिन इस मेले में आपने पूरी पाकिस्तानी सकाफत दिखाई, जापानियों को अपना सारा मुतारिफ कराया, बड़ी ही ज़बरदस्त कोशिश है।
0: उम्मीद है कि ये फेस्टिवल जापान और पाकिस्तान के आवाम के लिए मुस्तकबिल में मज़ीद करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने की बुनियाद बनेगा।
5: जी खलील साहब, अब घड़ी की सुइयाँ इशारा करने लग गई हैं कि इजाज़त लेने का वक्त आ गया है।
0: तो NHK वर्ल्ड जापान के मेज़बानों वसीमा आबिद और खलील शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।
6: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। सामीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। होम पेज का एड्रेस है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: उगते सूर्य के देश से सभी श्रोताओं को रंजना सिंह का भी नमस्कार।
2: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: कामायनी जी, रंजना जी, आपको और हमारे सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत बधाई।
1: सभी को अनेक शुभेच्छा। और आप बताइए, आपने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया?
0: देखिए, भारत से दूर इतना जोर शोर से तो नहीं मना सकते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय दूतावास में झंडा रोहण समारोह में जरूर शिरकत कर सकते हैं। और जब तिरंगे को लहराता देखती हूँ ना, तो मन में खुशी और गर्व महसूस होता है।
2: जी, सही कहा आपने। लेकिन एक ही दिन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने की बजाय, मेरा मानना है कि हम अपने दैनिक कृत्यों से देश प्रेम दिखा सकते हैं।
0: विचार तो बहुत बढ़िया है, तो चलिए अपने श्रोता मित्रों से ही पूछा जाए कि उनके विचार में देश प्रेम के लिए क्या करना चाहिए।
2: अगले पत्र में जरूर बताएं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। झारखंड जमशेदपुर से SP शर्मा जी के इस पत्र से। शर्मा जी ने योग दिवस पर चरी के देश से कार्यक्रम की प्रस्तुति को बेहद पसंद किया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, लिखते हैं, योग दिवस पर प्रसारित चरी के देश से कार्यक्रम सुना था। इस प्रोग्राम में योग

0: योग के महत्व के साथ जापानी प्रैक्टिशनर द्वारा भारत में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने और इतिहास रचने की प्रेरक कहानी सुनी, बढ़िया लगा। योग तो जीवन में नया जोश और उत्साह भर देता है और जीवन को ही नया बना देता है। इस तरह की प्रेरक कहानियों को आगे भी सुनाते रहिए। शुक्रिया और शुभकामनाएं।
1: शर्मा जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार, धन्यवाद। वाकई योग जीवन में नई ऊर्जा भर देता है।
2: जी हाँ, और इस साल की थीम तो हम सभी के लिए जरूरी है, स्वस्थ आयु के लिए योग। वैसे शर्मा साहब, मीनाक्षी मियोको जी के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो अब वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको भी जरूर देखें। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से योग को अपनाया है वो वाकई प्रेरणादायक है।
0: मित्रों, आप सब भी जरूर देखें। इसकी लिंक NHK World Japan की हिंदी सेवा के फेसबुक पेज पर पिन की गई है। इस पेज पर जाते ही सबसे ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगी।
2: अच्छा, आप तो देखें ही, अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी इस लिंक को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग इससे प्रेरणा लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाएं। रंजना जी, देख रही हो, आपने अगला पत्र उठा भी लिया है, किसका खत है?
1: जी, ये पत्र है ओडिशा के सिंगा से हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल जी का।
2: अच्छा,
1: लिखते हैं, 9 अगस्त को साप्ताहिक कार्यक्रम चेहरी के देश से के अंतर्गत मेरे पत्र के उत्तर को सुनकर मन कुछ देर के लिए भीतर तक उदास हो गया। मन को थोड़ी निराशा अवश्य हुई, क्योंकि वर्षों से जुड़े इस आत्मीय रिश्ते में कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा भी मन में पलती रही थी। फिर भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी भावनाओं को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया और मेरे मन की बात को श्रोताओं तक पहुँचने का अवसर दिया।
2: सुरेश जी, यकीन मानिए, आपको निराश कर हमारा दिल भी दुखी है, लेकिन कई बातें हमारे वश में नहीं होती हैं। और देखिए, सुरेश जी ने अपने पत्र में आगे लिखा है, भाई राम कुमार नीरज जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने मेरे प्रति इतना स्नेह, सम्मान और आत्मीयता प्रदर्शित की। आगे क्या संभावना बनती है यह तो समय ही बताएगा। जीवन में कुछ दरवाजे भले ही बंद दिखाई दें, लेकिन उम्मीद का एक छोटा सा दीपक मन में हमेशा जलता रहता है। बहरहाल, एक बात आज भी उतनी ही दृढ़ता से कह सकता हूँ, जब तक सांसों में सांस है, हिंदी के प्रति हमारा प्रेम और हिंदी सेवा का ये साथ यूं ही अनवरत बना रहेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ये रिश्ता और ये समर्पण कभी कम नहीं होगा। आपके स्नेह व आत्मीयता के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपको भी अनेक धन्यवाद। आप जैसे श्रोताओं का निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ही हमारा संबल और हौसला है।
2: जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हमारे प्रिय श्रोता मित्र RS विजय कुमार ने सुरेश जी की जापान यात्रा की ख्वाहिश पर लिखा है, 2 अगस्त के चेरी के देश से कार्यक्रम में रेडियो जापान के बहुत ही पुराने श्रोता एवं मेरे घनिष्ठ मित्र सुरेश अग्रवाल जी के पत्र का जवाब देते हुए आपने उन्हें जापान आने का निमंत्रण दिया तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन आपने जब ये कहा कि वे अगर जापान घूमने आए तब वहाँ जापान में घूमने का सारा प्रबंधन रेडियो जापान हिंदी सेवा के सदस्य करेंगे, ये बात सुनकर तो मन एकाएक ठंडा पड़ गया। दरअसल मुझे और सुरेश अग्रवाल जी को बड़ी आशा थी कि NHK हिंदी विभाग की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने बहुत ही पुराने एवं नियमित श्रोताओं के लिए कुछ विशेष आकर्षण होगा। हम तो बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। अगर हमें निजी तौर पर कभी जापान भ्रमण करने का अवसर मिला तो हम जरूर आपका आश्रय लेंगे और NHK स्टूडियोज में भी आप सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे।
0: RS विजय कुमार जी, जरूर जरूर जरूर पधारे, हम सभी आपके स्वागत में तैयार खड़े मिलेंगे। जहां तक NHK वो जापान से हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ मनाने की है, तो उसमें पूर्व प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए यादों के झरोखे में झांका गया था। यकीन माने, वो भी आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने जितना ही कठिन था।
1: सही कहा, क्योंकि इन 7 दशकों में प्रसारण और रिकॉर्डिंग आदि के तरीकों और मशीनों में जबरदस्त बदलाव हुआ है।
2: जी बिल्कुल। और RS विजय कुमार जी ने आगे लिखा है, इस पत्र के माध्यम से मैं 28 जुलाई को दक्षिणी जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर में आए भीषण भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सचमुच जापानी प्रशासन और जापानी लोगों की दाद देनी होगी कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में और उनका सामना करने में वे कितने सतर्क रहते हैं। NHK हिंदी के वेबसाइट पर आपने इस भूकंप के कुछ तस्वीरें जो साझा किए उसे देखकर तो मन विचलित हो गया। जब तस्वीरों को साझा करने की बात चली है तो एक वीडियो पर अपनी बात रखना चाहूंगा जिसे हाल ही में आपने साझा किया। सांसा ओदोरी उत्सव के वीडियो में नर्तकों ने जिस प्रकार से बांसुरी एवं ढोल बजाते हुए अपना नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया वो सचमुच एक भव्य दृश्य था। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये रोमांचकारी नृत्य जापान की एक प्राचीन एवं पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रस्तुत करते हैं।
1: विजय कुमार जी, वाकई जापान में जिस साहस और तत्परता से आपदाओं से निपटा जाता है वो प्रशंसा योग्य है। कुमामोतो भूकंप के समय एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी। डॉक्टरों और नर्सों ने जिस साहस से रोगी को बचाने की कोशिश की उसकी वीडियो फेसबुक पर साझा की गई थी।
0: फेसबुक पर कुमामोतो और कोलंबिया के हालिया भूकंप पर कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अस्पताल डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा पर माही मुकेश वादी, अशोक थापियाल, हितेश सोलंकी, बलवंत सिंह, दीपेश बसनेत, विद्या झा, अमोल पवार, सोनू राठौड़, सुषमा सिन्हा, लीला देवी, मंजू ठाकुर, पूजा जायसवाल ने इमोजी के जरिए आभार व्यक्त किया है। सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टरों की इस निष्ठा को देखकर लगता है कि सच्ची सेवा करने वाले लोग अब भी हैं। गजधारा और आशा कटारिया ने डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा है।
1: वाकई अस्पताल के सभी लोगों ने विपत्ति के समय बड़ी सहजता दिखाई थी, सजगता से काम किया था। जापान पर बरसी अणुबम विभीषिका को 81 वर्ष बीत गए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में स्मृति सभाओं का आयोजन किया गया जिनकी वीडियो पर भी कई लोगों के संदेश मिले हैं। राहुल भारद्वाज लिखते हैं, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं।
2: वीना जी लिखती हैं, एक ऐसी दुनिया की कामना करती हूँ जहाँ फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो, परमाणु खतरा रहित संसार की कामना में सब साथ आए। वहीं आलोक शुक्ला लिखते हैं कि ये मुझे दुख से भर देता है, अणुबम हमले के पीड़ितों को भारत की ओर से गहरी संवेदना। भारत और जापान महान देश हैं और दोनों के बीच मैत्री हमेशा प्रगाढ़ रहेगी।
1: और अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ये एक लाइन का पत्र है धर्मपाल पनिहार जी का। लिखते हैं, जापान में रेल यात्रा के प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने की कृपा करें।
2: अरे वाह धर्मपाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। जापान की सुचारू रेल व्यवस्था, व्यापक नेटवर्क और समय की पाबंदी के किस्से तो जग जाहिर है। ये जापान के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है जो लोगों के दैनिक जीवन और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है।
1: जी, जापान के उत्तर में होकाइडो से लेकर नीचे दक्षिण में क्यूशू तक रेल की पटरियों का व्यापक जाल बिछा है। देश के किसी भी कोने में घूमने जाना हो तो यकीनन उसके निकट तक रेल सेवा जरूर मिल जाएगी।
2: वाकई, और समय की इतनी पाबंद की क्या ही कहें, 15 सेकंड की देरी हो जाए तो उसके लिए भी माफी मांग ली जाती है।
0: सही कहा। रेल सेवा की पाबंदी ऐसी है कि ट्रेन की रवानगी के समय से आप घड़ी मिला सकते हैं। इसके चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। टोक्यो महानगर और वृहद टोक्यो में रेल सेवा का बहुत घना जाल है। जिसमें सतह पर चलने वाली जापान रेलवे तथा भूमिगत रेलवे सेवा, टोक्यो मेट्रो और निजी कंपनियों की अनेक

0: जबकि स्टेशनों पर आसानी से कचरा पात्र नहीं मिलता है।
1: ट्रेनों की बात हो और जापान की प्रसिद्ध सुपर फास्ट ट्रेन शिंकानसन को आप कैसे भूल सकते
0: हैं? जी बिल्कुल।
1: तोकाइडो रेल सेवा से इसका जाल बिछना शुरू हुआ था। 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। तब से तोहोकु, होकुरिकु और क्यूशु आदि तक इनका विस्तार हुआ है। रूट के अनुसार इनकी रफ्तार 280 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है।
2: यानी टोक्यो से ओसाका की 500 किलोमीटर की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी। सुबह ओसाका काम से जाओ और रात को वापस घर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कमाल है। दिन के सबसे व्यस्त समय में टोक्यो से ओसाका के लिए 1 घंटे में 13 ट्रेन चलती है, यानी हर 5 मिनट में एक ट्रेन, जो क्योतो, शिजुओका, नागोया जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
0: अभी देखिए ना, देश भर में उबोन की छुट्टियां चल रही हैं। इन दिनों अधिकांश लोग अपने गृह नगर जाते हैं, इसलिए शिंकानसेन हो या मेट्रो, हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। फिर भी कोई देरी नहीं, ना कोई धक्का मुक्की। जानती है 1964 में शिंकानसेन की शुरुआत से अब तक 10 अरब से ज्यादा यात्री इसमें बैठ चुके हैं, लेकिन दुर्घटना की दर ना के बराबर।
1: जी वो तो है। और देखिए, भारत के कितने शहरों की मेट्रो सेवा भी तो जापानी तकनीक से ही बनी है।
0: जी बिल्कुल।
1: दिल्ली में मेट्रो के बिना जीवन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
0: बाकी
1: पुरानी दिल्ली से गुड़गांव तक का सफर करीब 1 घंटे में आसानी से तय हो जाता है। सड़क के ट्रैफिक जाम की कोई चिंता नहीं है अब।
2: मुझे तो अहमदाबाद से मुंबई तक शिंकानसेन चलने का इंतजार है। इसमें जापानी तकनीक ही नहीं, लोगों को प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: अच्छा, ये तो बात हुई असली ट्रेनों की, लेकिन बच्चों में शिंकानसेन के खिलौने कितने लोकप्रिय हैं। पेंसिल, रबर, स्केल, बैग, हर तरह का सामान मिलेगा जिस पर उनकी प्रिय शिंकानसेन बनी है।
1: उम्मीद है धर्मपाल जी के साथ ही हमारे अन्य श्रोता मित्रों को भी जापान की रेल सेवा पर ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप हमारी वेबसाइट पर आज के कार्यक्रम को 1 सप्ताह तक सुन सकते हैं।
0: और हाँ, वेबसाइट और फेसबुक पर कार्यक्रम की लिंक को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी साझा करें। और कमाईनी जी, रंजना जी, इस सवाल के बाद आज मुझे अपने एक प्रिय श्रोता मित्र नजीमुद्दीन जी की याद आ गई, जो अपने पत्रों में हमेशा एक सवाल किया करते थे।
1: वाकई उनकी इन दिनों अनुपस्थिति बहुत हम महसूस कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: साथ ही अगर आप जापानी ट्रेनों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर रेलवे किंगडम जापान समय की पाबंद शिंकानसेन और जापान रेलवे जनरल श्रृंखला भी जरूर देखें, जहां आपको रेल सेवा में आ रही नवीनतम तकनीक आदि पर विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में है, लेकिन साथ में हिंदी सबटाइटल्स हैं।
2: हमने ट्रेनों पर इतनी बात की, तो जाने से पहले क्यों ना इन्हीं पर एक जापानी गीत सुना जाए।
1: क्यों नहीं, तो आइए सुनते हैं ये गीत देंशा नो मादो कारा, यानी ट्रेन की खिड़की से, जिसे स्वरबद्ध किया है बैंड ग्रुप बैक नंबर ने।

0: मित्रों, आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को,
1: कामायनी सिंह को
2: और रंजना सिंह को
3: सायोनारा, नमस्कार।

0: तो आप सक्सेस नहीं होते इस मुल्क में।
1: मेरा नाम भीम हाशिम है और मैं जापान में पैदा हुआ हूँ।
2: अच्छा
1: जी, मेरे ख्याल में लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लैंग्वेज आती होगी, आप जापनीज से दोस्ती भी कर सकते हैं और आप भी यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है लैंग्वेज फर्स्ट नंबर पे।
2: फर्स्ट नंबर है जी। अच्छा जी,
3: आपका नाम?
4: सबा। जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ के फिर रूल्स भी फॉलो करना ज़रूरी है। इस वजह से मैं समझती हूँ कि अगर आप जापान जैसे मुल्क में रहना चाहते हैं तो फिर उधर के रूल्स फॉलो करें और उधर की लैंग्वेज भी सीखें।
5: मेरा नाम मोहम्मद नौमान है, मैं पाकिस्तान में कोहाट से ताल्लुक़ रखता हूँ और फैमिली के साथ यहीं पे मुकीम हूँ। जो सबसे ज़रूरी पहले नंबर पे जो मैं वो समझता हूँ वो है हमें इनकी ज़बान और कल्चर सीखना।
2: अच्छा,
5: क्योंकि अगर हम इनकी ज़बान और कल्चर को ज़्यादा समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ों को खुद ही मतलब हम समझना शुरू हो जाते हैं। मतलब पड़ोसियों के साथ हमने किस तरीके से रहना है, दोस्तों के साथ बर्ताव करना, बात, ये लोग एहतराम के तरीके से हर किसी से बात करते हैं तो वो चीज़ का ख्याल रखना, तो वो सारी चीज़ें इनके कल्चर में खुद ही हमें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं।
6: मेरा नाम हमाद अली है और मैं जापान में पिछले 4 साल से हूँ और मैं यहाँ पर IT इंजीनियर हूँ।
2: आपने आदाब मुआशरत से आगाही का इंतखाब क्यों किया?
6: जी, इसलिए किया कि सबसे पहले जो है ना, ये एक डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं, एक डिसिप्लिन मुआशरा है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और एक आपको सबसे पहले जो उनका मिलने का अंदाज़ है जिसमें वो सबसे पहले सलाम करते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमारा दीन भी हमें ये चीज़ सिखाता है।
7: सब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने हाजरीन से ये भी सवाल किया कि आप इंटरनेट या रेडियो पे किन मौजूदात पर हमारे प्रोग्राम सुनना चाहेंगे?
2: प्रोग्राम का सबसे मशहूर मौजू जिसके बारे में हर कोई देखना और सुनना चाहता था वो था जापानी ज़बान सीखना। ज़्यादा दिलचस्पी के दीगर मौजूदात में सकाफत और तर्ज ज़िंदगी और आफात से बचाव और तैयारी के मौजूदात भी शामिल हैं।
7: हमने इस हवाले से भी कई लोगों के इंटरव्यू किए,
2: तो आइए आपको सुनाते हैं। आप रेडियो या इंटरनेट पर हमारी नशरियात सुन सकते हैं। फिल वक्त हम कुदरती आफात से बचाव की तैयारी, हालात हाजरा, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी, तिजारत, टेक्नोलॉजी, जापानी सीखें, जापानी ज़बान सिखाते हैं, बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तफरीही प्रोग्राम है, सफर व सियाहत है, स्पोर्ट्स है, साइंस और फितरत है और पॉप कल्चर और फैशन है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए उर्दू बोलने वाले, आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या सुनना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं इंटरनेट पर, हमारी वेबसाइट पर?
5: यहाँ पे कवानीन, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको बदलते कवानीन और उन चीज़ों के साथ इंटैक्ट रहने के लिए हालात हाजर के मुताबिक, मतलब जो करंट अफेयर्स हैं उनके मुताबिक अपडेट रहना बड़ा ज़रूरी है।
2: अच्छा,
5: तो हालात हाजर
8: सबसे पहला तो मैं कहूँगी जो है कुदरती आफात से बचाव के लिए, क्योंकि जापान में बहुत सारे यू नो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, तो इसके लिए आप मतलब हमें लिटरली चाहिए कि हम अप टू डेट रहें इन्फॉर्मेशन के, इवन वो उर्दू में हो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको जापानीज़ नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो ये बहुत हेल्प आउट करेगा ना।
9: आई थिंक स्पोर्ट्स
2: स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स
9: यहाँ पे ये होता है कि स्कूल्स में जब हम जाते हैं तो इनके एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हर एक की कुछ ना कुछ क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी हैं, तो बच्चे सिर्फ टिकटॉक और इन चीज़ों पर लगे हुए हैं, तो आई थिंक अगर हम स्पोर्ट्स जो है इस साइड पे तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर हो।
10: सबसे मेन है बेसिकली वो नंबर वन ही है कुदरती आफात से बचाव के लिए जो तैयारी है,
2: सही,
10: तो इससे जो बेसिक जो मालूमात है वो होनी चाहिए।
2: ठीक,
10: पार्टनर्स को
2: सफर व सियाहत। अच्छा, जापान के अंदर है जापान से बाहर?
11: आई थिंक जापान के अंदर।
2: कौन कौन सी जगह है आप जहाँ देखना चाहती हैं? हमारे
11: वो जगह जो अनसीन है।
2: बच्चों के जो प्रोग्राम आपने इंतखाब किया
11: जी,
2: हम अपने प्रोग्रामों के जरिए बच्चों को क्या सिखाएं?
11: मौजूद जैसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
2: मसलन उसमें,
11: मसलन के जापानी बच्चे जो हैं उनके अंदर ये बहुत, वो लोग कूट कूट के भर देते हैं,
2: सही,
11: लेकिन हमारे बच्चों में हम नहीं कर पाते। तो अगर हमें पता होगा कि किस तरीके से हम ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं, लाइन अप होना, अपनी बारी का इंतज़ार करना और अपनी हार मान लेना,
12: साफ रखना अपने एरिया,
11: अपने एरिया, हाँ,
2: सफाई
11: को नहीं।
13: बिजनेस और टेक्नोलॉजी।
2: बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी,
13: क्योंकि देखें बिजनेस और टेक्नोलॉजी, आगे टेक्नोलॉजी का दौर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, AI हर किसी को जो है ना समझना ज़रूरी है।
4: अच्छा, मेरे ख्याल से जैसे जो पाकिस्तानी है जिनको अभी लैंग्वेज नहीं आती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि इधर की न्यूज़ का पता चले, तो उसके लिए तो आई थिंक ये हालात हाजरा है।
2: सर्वे में हिस्सा लेने वाले तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया।
7: सामिन, ये फेस्टिवल पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ मिल बैठने का बल्कि अपनी सकाफत के पोशीदा पहलुओं की दरियाफ्त का बेहतरीन मौका था और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि देखें जापान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, दोनों के दरमियान मीलों की दूरी है, लेकिन इस मेले में आपने पूरी पाकिस्तानी सकाफत दिखाई, जापानियों को अपना सारा मुतारिफ कराया, बड़ी ही ज़बरदस्त कोशिश है।
2: امید ہے کہ یہ فیسٹیول جاپان اور پاکستان کے عوام کے لیے مستقبل میں مزید قریبی تعلقات استوار کرنے کی بنیاد بنے گا۔
7: جی خلیل صاحب، اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کرنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے۔
2: تو این ایچ کے ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/اردو۔